0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ང དེ འདྲི ཡིན ཨ ཅུང མ དེ འདྲི ལ ཅེ ཁྱི རང གསུམ ལ ཕུ ཡ ཡིན ལ ནེ སེ ཐོ ཅི ཨ དང དང ང རང ཚོ ལེ ཅན ན ཤུང གེན ད ཐོ པོ ཐོ མ ཅེ ཨ ཅེ ཡི ཁུ ཉེ ཅེ ཨང གུ ཅན ཅེ ཅེ ཨ ནི ཁྱི རང ཉིན ཐོ པོ ན ཤུང གེན ཅེ གང ག ཕུ ཡ ཡིན དོ ལ ནེ སེ ཨ ང རང ཚོ ལུང རི གི ཏུ རིན གེ གེན དོ ལ ཅེ ཅུང མ ཅེ ཐོ མ ཅེ མ དེ འདྲི གེན དོ ཐོ ཅི ལ ཅེ པ སང nga ji shi nye ju tu ji tsa re lup du namba tu num dan tsu ya ka tu ju le to re an tanga shuk kya vre na siya yin kya la
2: ji ji le se
1: a pa ma tsum dan kye ba so sum du so du den ba ha hu se a la pe gna ru ji la tuen kyu yon ba ta a nga zi mi ma namba tsu ta ta ta re nen do su le gu da la pra ta tu yu le nga le ak la amba re a ta ba tu je yin na re la nga tu tu yin na re ka nga ser so na ro si ki kya la
2: le se
1: ā tā lū lō tē kāngā shīngrō māng chō sā nē mīndō kāngā yā tū kē nāng jī yōng bē mīndō shū wē ān kē nā tō sōm kūlē kā sō nī jī lē tē kū tē jē jī xē wā shī tē kūlē kā wē ā yā mī māng gō chō kū shō wā rā kē lā
2: Lē sē, wān sī nā mō tō jī Ā tā nē jī
1: shū jā kū rū wē ā sō tē lē kā lē tē yō
2: Lē sē
1: Ā lē jē sōm kū tā nī sō shū wō
2: Lō, shī lēn jā wō
3: Lō
2: Lē kū ngā mī sā
3: अरे कौन काम सा था
2: लो काम सा चल खा सोई ना ला
3: अब तुझे मिल गई थी शी तो ला मैं किसी कमा तो कला संग किसी के में डाल दो ला
2: ने से लो लो की लूला बीम जैसे लगे ले ना मैं सिम ना की लो का सिबे सुन से दी सो पी जी ना ला
3: आ शे तो तंग तो ले जा सो तो बनी ता सब तंग तो नंग क्या ला ला पुया ये ला
2: ने से तो छे ना ला
3: तो के तंग ये की छुले ने ता सी की फेले जा मा जा संग को के मो के नी थकवा ने थोची ना शुद जा मा से नी बा के के के ता 用给三个他现在这个播种起来了他现在投上面我们对了现在按照各项项目了现在通过多少钱了等等这个等这个过了等等这卡就给对了现在我们全部了他全部拼到了现在这次通过了现在那个怎么出去了因为等到给投标了他用给三个三米元了不要紧了那谁来了 아, 기대긴 이거지 다 괜찮아요. 기대기 이제 소연 이름 세 톡에 상에 까봐 상승이 찍지 똥 맞아라.
2: 네세. 너